0: जानकारी गराइन्छ। किकापुर नगरपालिका कार्यालय।
1: यो माटो प्यारो छ, यो बाटो प्यारो छ।
2: विद्युत महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गतेबाट टिकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
4: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
5: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का न घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: बुका पिरै ठक बिपेन सिलिरै ठक बु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फ्यो ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बराइती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिये रही ना कबु पेंसिल ले रही ना झोला फाटल हुई थी कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 100 से 150 जहन ज्येष्ठ नागरिक उपकरण सुपर नेट झूल वितरण करल ज्येष्ठ नागरिक खुशी। घोड़ागौड़ी नगरपालिका में बाल बालिका हुक्रा विद्यालय छोड़ना समस्या समाधान करना पालिका से नीति बना के काम करे पर्ना शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र बहादुर सिंह के कहा। कैलाली में प्रहरी के से वैशाख महीना भर प्रगति लागू औषधो अवैध मदिरा बरामद में औसत 11 लाख राशि संकलन। वाईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में अमेरिका ऊपर नेपाल के शानदार जीत। आप पूरा खबर टिकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 वाड़ामर हल 150 जाने ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सुपरनेट झूल वितरण करल बा। वाड़ा कार्यालय गर्मी के समय में मच्छर के टोकाई से बचना सपुआ कीड़ा फटेंगरा के दर रकोर से ज्येष्ठ नागरिक हुकरन के सुरक्षा में सहयोग हुए कहके झूल वितरण करल जनायल बा। झूल वितरण करती वाड़ा अध्यक्ष मोहन विकासे 2000 से ढेर ज्येष्ठ नागरिक हुकरा रलक कोर से ई वर्ष 73 वर्ष उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सम्मान बटवागिल बा। वहां हरेक वर्ष समय ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम करते एलकमा बटोई थी। ई वर्षा पे लामखुट्टे के टोकाई के कारण से लगना रोग से बचना सहयोग हो कहके झूल वितरण करल जानकारी दिले बाट। विकास से सम्मान के समेत संस्कृति हरिट गैलक ओर से ज्येष्ठ नागरिक हुकरन माया और सम्मान रलक कहती संदेश देना रलक ओर से ऐसी काम करल बटोले बाट। वाड़ा सदस्य गणेश घरती मगर से ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सरकार से भूल लल नहीं हो कहना महसूस करेना हो सपुआ उसक कीड़ा फटेंगरा के कटो पैना से बचाक की जोखिम से बचना झूल लगा के सुते परत कहना संदेश फे देना काम करल बटोले बाट। कार्यक्रम में वाड़ा सचिव चक्रबहादुर रावल से चालू आर्थिक वर्ष में ₹1 लाख बजेट से ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सम्मान स्वरूप झूल उपलब्ध करा गिले हो। झूल पायल पाछ ज्येष्ठ नागरिक खुशी हुई बाट। रात के सुते बेर मच्छर से कटो पाके सतैती रलक में अब झूल लगा के सुतना ज्येष्ठ नागरिक सरस्वती देवी आचार्य बटोले बाट। और ज्येष्ठ नागरिक कौशिल्ला ढुंगाना से समेत झूल पुरान रहल रह मनोवाड़ा कार्यालय से उपलब्ध करैलक में आप झूल फेरना बटुले बाटे। कार्यक्रम में पत्रकार दुर्गा देवकोटा झलनाथ खनाल से समेत वाड़ा कार्यालय से ज्येष्ठ नागरिक हुकरन सम्मान करना सकारात्मक रहल बटुले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय कैयाली से चालू आर्थिक वर्ष के वैशाख महीना में जिला के शांति सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा सवारी व्यवस्थापन के क्षेत्र में हासिल करल प्रगति विवरण सार्वजनिक करल बा। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायक उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल सिन्हा से देहल जानकारी अनुसार वैशाख महीना में लागू ओसार पोसार नियंत्रण में अवैध घरेलू मदिरा जफत और सवारी नियम उल्लंघन करुआ ऊपर कार्रवाई करके लाखों रूपया राशि संकलन करल बटोले बाटे। पाचक समय में समाज के मुख्य चुनौती के रूप में देख पर्लक लागू औषध दुर्वेशनी और तस्करी नियंत्रण अभियान अंतर्गत के प्रहरी से वैशाख महीना में भारी सफलता हाथ पारल बटवागिल बा। यह अवधि में प्रहरी से लागू औषध संबंधी कुल 58 मुद्दा दर्ता करके अपराध संलग्न 100 जाने पकड़ाव करना सफल हुई बा। जिसे 2 जाने महिला 98 जाने पुरुष रहल बाटे। पकड़ाव परल व्यक्ति उपकरण के साथ में प्रहरी 81 ग्राम 640 मिलीग्राम खैरो हिरोइन 20 ग्राम 130 मिलीग्राम 444 ग्राम 970 मिलीग्राम गांजा बरामद करके कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाल बटवागिल बा। उस करके सामुदायिक सुरक्षा में खलल पुगैना हो घरेलू हिंसा के मुख्य कारण बनना करलक ओर से अवैध मदिरा नियंत्रण ओर फिर समेत कैलाली प्रहरी अपन सक्रियता बढ़ाएल बा। वैशाख महीना में जिला कि तमाम स्थान में 1562 लीटर तैयारी घरेलू मदिरा हो। मदिरा बनाईना प्रयोग कर्जिना 6200 लीटर कच्चा पदार्थ बरामद करके नष्ट करल जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से जनाइल बा। हाल नेपालमा पश्चिमी वायु स्थानीय वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइल बा। जेकर प्रभाव से हाल गंडकी ओसक बागमती और कोशी प्रदेश के ढेर स्थान में पानी पर्ती रहल बा। आज दोपहर के कोशी प्रदेश लगायत के बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बा। कोशी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कम स्थान तथा मध्य प्रदेश लगायत के लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में तथा कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के वर्षा हिमपात की संभावना रहलवा। मध्य प्रदेश और कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में हावाहुरी के फिर संभावना रहलवा। सूर्यपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के भूभाग में तापक्रम बढ़ना संभावना रहलवा। खोज खबर में आए गरी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना।
2: सिटी भिटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना, सामान्य चिकित्सा HA 40 जना, नेत्र विज्ञान OA 40 जना, डिप्लोमा इन फार्मेसी DPF 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि।
1: अनलाइन आवेदन फारम को अंतिम मिति जेठ 13 गते बुधवार।
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र। अनलाइन आवेदन फारम www.cetvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नु पर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SA का कागज पत्र ल्याई शिक्षालय मा भर्न सकिनेछ।
1: कागज पत्रहरू
2: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति,
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि,
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि,
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो,
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस।
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
2: सम्पर्क नम्बर 0969900044, 9858700044, 9847202740, 9762823921 र 9769963520।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
5: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: प्रणाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू,
5: फरकिला कक्षाहरू,
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
6: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
6: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584 24167।
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 1-3 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5-4 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4-5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 2-6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1-7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: एकनगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 1-8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 6-10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9-11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3-12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
0: घोडाघोडी नगरपालिकामा बाल बालिका हुक्रन, विद्यालय छोड्न दर घटैना, विद्यार्थी ओ अभिभावक हुक्रन के समस्या पहिचान करके उहे बमोजिम के योजना बनाइना घोडाघोडी नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख गजेन्द्र बहादुर सिंह बटुलेबाट घोडाघोडी नगरपालिकामा विकास केलाक युवा एकेबद्धता या धनगढ़ीका आयोजनामा हुइलक विद्यार्थी कक्षा छोड्न समस्या औ समाधानको उपाय विषय संवाद कार्यक्रममा प्रमुख सिंह असिनबाद बटुले खुवाई। कार्यक्रममा बोल्ती घोडाघोडी नगरपालिका के वार्ड नम्बर 2 के वाडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद चौधरी, विद्यार्थी हुक्रा विद्यालय छोड्न बाद आर्थिक समस्या, जनचेतना के कमी, संरक्षण के समस्या, जोनसुके रलसफिन विद्यालय छोड्न दर बढ़िना समेत मजा नै रहल कहती, यी प्रवृत्ति रोक्न सक्कु सरकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुके प्रतिबद्धता हुई पर्नमा जोड़ देले बाटै। अभिभावक बसन्त साई के अनुसार विद्यालय छोड़लक कारण मध्य के समेत मोबाइल के लत फे रहल बा। आजकल के लड़का प्रकार खाना से फे समेत ढेर मोबाइल में बिताइल रहलक कारण पढ़ाई प्रति रूचि नै जगना करते रहलक बटोले बाटै। यदि अभिभावक हुक्रा बाल बालिका हुक्रन मोबाइल लत केल समेत छुटाई सिक्ने कलसे ढेर बाटमा सुधार होइन उहाँ बटोइले बाटै। असिके अस्तको राष्ट्रिय मावि तारा नगरके प्रधानध्यापक मनोज कुमार जोशीके अनुसार फे विद्यार्थी से विद्यालय छोड्नके कारण ढेर रहलस फेन उह कारण विद्यार्थी समेत विद्यालय से विद्यार्थी के मनोविज्ञान नै बुझ्न समेत बटोइतिआएल बाटै। पाठ्यक्रम एकदम रसयुक्त समेत आकर्षक रलसे फेन शिक्षक हुक्रा पढ़ना शैली विद्यार्थी से बुझना क्षमता फरक हुईलक वर्षे इधर बरल हो शिक्षक हुक्रन के शिक्षण करबेर विद्यार्थी उत्प्रेरणा सहित के रमाइलो तरीका से शिक्षण करना हो कल से कुछ हटसम हुईल सम्भे कम हुईना वहां के बुझाइबा। संवाद क्लब के समेत अध्यक्ष हेमा नेउपानी से विद्यालय क्लब ने बाल बालिका हुक्रन के जीवन में आई पर्ना हरेक सिप सिक्ना स्थल के रूप में स्थापना करलक बटोले बाटे। हरेक बाल बालिका हुक्रन तमाम क्षमता रलसे फेन पढ़ाई प्रति खेलकूद लगायत के सृजनात्मक बाट में फे विद्यालय में समेत जोड़ देना हो कलसी विद्यालय में समेत छोड़ना दर में फे कमी ऐना वहां की कहाबा। संवाद कार्यक्रम में शिक्षा शाखा प्रमुख जनप्रतिनिधि विद्यालय के शिक्षक त तथा व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष अभिभावक बाल बालिका और पत्रकार के सहभागिता रह संवाद कार्यक्रम से विद्यालय छोड़ने समस्या में जीसुके रलसे फेन सकु सरकार वाला पक्ष हुकरण के समन्वय सहकार्य में विद्यालय छोड़ने दर घटना पर्ना में निष्कर्ष निकाल बा शनिचर अटवार के सार्वजनिक विदा देना सरकार के निर्णय लागू हिल पास से पाठ्यक्रम विकास केन्द्र से विद्यालय में तहमा पाठ्यक्रम समेत पढ़ना लिखलक लग संचालन और कार्य घंटा मिलान के लग लौवा व्यवस्था करल बा मंत्री परिषद से गैल चैत 22 गते के निर्णय अनुसार सरकारी कार्यालय के तथा सक्कु शैक्षिक संस्था में हप्ता में दुई दिन शनिचर अटवार के विदा देना निर्णय पास केन्द्र से लौवा व्यवस्थापन करलक बटवागिल बा कैलाली के धनगढ़ी में दुई दिन सुदूरपश्चिम कचेरी 2083 कार्यक्रम शुरू हुई बा कार्यक्रम के उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह करल के हुई उद्घाटन समारोह है संबोधन करती वहां सुदूरपश्चिम प्रदेश में रहल अपार संभावना है समृद्धि संगे जोड़ना नीतिगत पहल आवश्यक रहल बटोले बाटे मुख्यमंत्री शाह से कार्यक्रम में हुई बहस और छलफल से प्रदेश तथा स्थानीय संघ विकास और नीतिगत सुधार के लग मार्गदर्शन मिलना विश्वास व्यक्त करले बाटे खोज खबर में फेन से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
9: जब जब गर्मी महीना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रांड को आइसक्रीम को याद आउँछ मैंगो लीची कोला स्ट्रॉबेरी कुल्फी चोकोबार चोको फनबार आहाहा कति मिठो मलाई त साह्रै मन पर्छ यति मात्रै कहाँ हो र शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रीमको खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रीमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ मैले त वर्षेनी खान्छु अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रीमहरू एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है
10: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रीमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर एक ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 98584 र 98673 69622
9: रियल मिल्क रियल आइसक्रीम अमूल्य आइसक्रीम खोजी खोजी खाऊ यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ
11: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना
12: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बाल बालिकाको व्यवस्था भएको र बाल बालिका ऐन 2075 बाल श्रम ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान मध्यपान सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ
11: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली
13: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त
14: मैनै जाइँ उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्के घरसे बाहर नै निकर्छु
13: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर यी पत्रिकामा लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
14: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं टप टू में अब भी जाए
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417। विश्राम पास से फिर से स्वागत बा। सरकार नॉन आयात निजी क्षेत्र है प्रवेश करायल पासे बजार में मापदंड बमोजिम के आयोडिन के मात्रा नहीं रलक नोन व्यापक रूप में बिक्री वितरण हुई रलक कुछ वर्ष पासे नेपाल में आयोडिन के कमी हुईना स्वास्थ्य समस्या जटिल रूप में देखना खतरा बढ़ल बता गया। नेपाल में सन 1965 से फेसेमत आगे दुई जहान मध्य एक जहान में आयोडिन के कमी हुईना तमाम मेर के समेत रोग लगना करती रह। सरकार से 5 वर्ष लगा के करगिलक अनुसंधान मन से 55% मनाईने गलगांट रहलो पुष्टि करल पास सन 1973 से लेके अनिवार्य रूप में आयोडिन रक नोन आयात करना निर्देशन दिया रह। सन 1965 में शुरू हुई लक अनुसंधान में सन 1970 में ओराइल रह कलश आयोडिन के नोन प्रयोग में सन 1973 से पास से शुरू करगिल एक क्रम में आयोडिन के कमी से हुईना समस्या घटती गई लख। सरकार से आयोडिन की मात्रा रलक नोन खरीद केलाक साल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है के निर्देशन देहलबा एक पाछा आयोडिन के समेत कमी हुईना सुस्त मनस्थिति स्तक गलगांड गर्भवती महिलाओं के बच्चा खरबासे जैना समस्या अल्छी लगना पढ़ाई लिखाई में कमजोर शारीरिक तथा मानसिक समस्या जैसी रोग घटती समेत गैलक बटवा गिलवा मन पाचक समय में बजार में आयोडिन केल नई हुईलक ओर से नोन व्यापक रूप में बिक्री वितरण हुई रहलवा। कुछ समय पहले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग से परीक्षण करेवियर हिमालयन पिंक रॉक साल्ट ओसको नाम के नोन प्रयोग आयोडिन के समेत मात्रा भेटागिल नहीं रह। प्रयोग से समेत 2083 वैशाख 4 गते प्राप्त नमूना ऊपर परीक्षण करगिल। परीक्षण अनुसार हिमालयन पिंक रॉक साल्ट केन्द्र के समेत नोन में आयोडिन के मात्रा मापन करके आयोडिन फैला नहीं पड़ल के हो। उक्त नमूना सेंचुरी ब्रांड अंतर्गत के रहल में उल्लेख करगिलवा सरकार से 2082 साल सावन 1 गति से निजी क्षेत्र है आयोडिन युक्त नोन उत्पादन तथा बिक्री वितरण में डगर खुलल रह। सरकार से आगामी वर्ष 2084 में हुईना स्थानीय तह के निर्वाचन हुईना से फे समेत बाकल से महीना आगे केल स्थानीय तह के संख्या और सीमाना हेरफेर करना हुईलवा। स्थानीय सरकार संचालन एन स्थानीय तह के निर्वाचन हुईना आगे 1 वर्ष आगे स्थानीय तह के संख्या सीमाना और वाड़ा के विवाद समाधान करना उल्लेख करल बा। मनो सरकार से स्थानीय सरकार संचालन इन्हें संशोधन करके 1 वर्ष के ठाव में निर्वाचन होना से फिर 6 महीना आगे स्थानीय तह के संख्या और सीमाना हेरफेर कर सकना व्यवस्था करना तैयारी करल बा। अब फिर समेत 102 स्थानीय तह में भौगोलिक सीमाना विवाद के समाधान नहीं हुए कोर से भौगोलिक जनसंख्यक संतुलन समेत आधार में सीमाना वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक नैरलक ओर से स्थानीय सेवा प्रदायक कार्यालय सम समेत सुविधा पुग्न असुविधा हुई आयल बा। ओआईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग अंतर्गत के घरेलू श्रृंखला में समेत नेपाल अमेरिका ऊपर समेत 9 विकेट से जीत हासिल करबा। कीर्तिपुर स्थित के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट रंगशाला में कालीखुल खेल में अमेरिका से डेहल 195 रन के लक्ष्य में नेपाल 9 विकेट के से समेत विजय करल के हो। नेपाल के लाख ओपनर कुशल भुर्तेरो आसिफ शेख से 194 रन के योगदान दिल है। भुर्तेल से शतक संगे नट आउट समेत प्रदर्शन के कारण नेपाल 196 रन के लक्ष्य सहजे भेटायल रहा। 13 चौका 4 छक्का के मदद से 118 बल खेल के 120 रन बनाए रहकल से आसिफ 72 बल में 8 चौका के मदद से 58 रन जोड़ के नट आउट रहल रहें। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 100-150 जना ज्येष्ठ नागरिक हुकन सुपानेट झूल वितरण कल ज्येष्ठ नागरिक खुशी। घोड़ागुड़ी नगर पालिका के बाल बालिका हुकरा विद्यालय छोड़ती विद्यालय छोड़ना समस्या समाधान करना पालिका से नीति बना के काम करना शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र बहादुर सिंह के कहा। कैलाली प्रहरी से वैशाख महीना में प्रगति लागू औषध अवैध मदिरा बरामद 11 लाख राजस्व संकलन। ओआईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में अमेरिका ऊपर नेपाल के शानदार जीत। बीच अबकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी आबे के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनतिर विराम।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नई देना बोले नई देना जैसी गतिविधि के लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखने से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जाय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: ए बा आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली।
3: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
2: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
3: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ।

0: आता छावा सांप कुछ नहीं कराय सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराय वो सब कुछ सांप बिखा फिर नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना कर दाई
2: लिया नेपाल में पा दिना बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा गरेचा जो खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठ सेक ई कटल से निबाई थे सैकत तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक्व हो सकता और रथ डोम जो बड़ा रिसाहा में हिक रथ निकरा फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह खा, संजय बिहान देख पड़ता निकरा कटल से फिर लक्व हो सकता वो और रथ कैली जातक सांप निकरा कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा जताई का घटना ढूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नासिबेर सापन का जताई का घटना ढूर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिडटाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल इठ कबु झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नि हेरत
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर आई रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोलै फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन में भाई मत अब
6: भाईलाई थाई रही ना चा? बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लगने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
3: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
6: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
7: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
6: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
2: ए ले ले ठिकै बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स मा गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल रहेठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फे ओस्ता बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपि हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन बो ओटो कहाँ टीकापुर में रलक रगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लगभग
1: पेशाब लगता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाट कोशी नो कल से मई टर्च लाइट वो लट्ठी दिए तू लेख जाओ
1: का चीज चुनु लट्ठी वो टर्च लाइट
0: का कर रही दाई राति बेला बाहर निकल पड़ला से वा टॉयलेट जाए पड़ला से जहा फे टर्च लाइट बार खो लम्बा लट्ठी देख के जाए पड़ता का कर की बर्खा छेक बा सांप रह से टर्च का उजाले सापन दिया खसेक दे था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुन खा साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर हूँ साप नु कितना ठाव सी न्यांग पड़ला से वो काम कर पड़ला से दहिया फेठा फुसियार विपद था गई खा सीखे लबाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा झांगा चलक ठाव में न्यांग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पठा गई खा कलबाट
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिलकोर से सुखा ठाव का खोजी में उकरा बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सकता विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिले जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: यही 2083 वैशाख 2 गते देखि असार 7 गते सम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुवेर थाहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुजिना डाग्दे पर्लसी हात गरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुलसे कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा।
1: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहेफे लागसेक्ठा। कुष्ठ रोगको शंका लगेकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
0: महिला उग्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्ना घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी।
1: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाँके से जनहित में जारी संदेश।
2: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: सीतापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरकारवाला ज्यूहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
1: दाई नाच बा कहाँ जाइ लग्नु त
2: पेसाब लाग्दा चर्पी जाइ टुका
1: ए रुको नाट पोसिन हो कला छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख दाबो
2: काजे चुनु लट्ठी वो टर्च लाइट
1: काकर रही दाई राटिक डाला बाहे निकल पड़ला से वाट वाइलिक जाए पड़ला से जहाँ फिर टॉर्च लाइट बार था वो लम्बा लट्ठी देखा के ना जाए पड़ता काकर की बरखा छेक बा सांप रह सेक था टॉर्च का अजलाले सांपन देखा सेक दी था वो लट्ठी ठेक ठेक आवाज सुनकर सांप भाग था
2: का ओ कतरा मजा सल्ला डेली।

सामुदायिक रेडियो टीका आफू एफएमकै संजिक 5 बजे थारू भाषाकै खोज खबरमा अपनेहरूको स्वागत बा खोज खबर समय सीता चौधरी के राम राम अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapuraefm.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से एमएलए द्वारा टीकापुर अस्पताल के बिरमे हुकन फलफूल वितरण दार्चुला में जीप दुर्घटना 5 जना घाइते दुई दिन में तोला में 8.5 हजार घटल सुन ओ कंगोमा इबोला भाइरस मस्या सिजना की मृत्यु डब्ल्यूएचओ ले घोषणातल विश्व स्वास्थ्य संकटकाल टीकापुर अस्पताल के बिरमहुकन फलफूल वितरण कलबाट नेकपा एमाले नगर कमिटी के टीकापुर 33 मदन आश्रित स्मृति दिवस के अवसर में अस्पताल के बिरमहुकन फलफूल वितरण कलबाट मदन आश्रित स्मृति दिवस के अवसर में नेकपा एमाले धेरसिन कार्यक्रम करकना और करलको अनुसार टीकापुर नगर कमिटी के टीकापुर अस्पताल के बिरमहुकन फलफूल वितरण क्लब टीकापुर नगर इन्चार्ज टपेन्द्र बहादुर रावल बटीबाट इन्चार्ज रावल मदन भण्डारी व जीवराज आश्रित के विचार आगा बढ़ेना काम नेकपा एमाले कतिरहल समेत बटीलोबाट फलफूल वितरण कार्यक्रम में सहभागी टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राम बहादुर भण्डारी के अस्पताल में भर्ना हुलक बिरमहुकन स्थल का फलफूल वितरण क्लब मजा काम हुलक कति धन्यवाद व्यक्त कलबाट अस्पताल में भर्ना हुलक 30 जना बिरमहुकन फलफूल वितरण कलक बोटैटी नेकपा एमाले टीकापुर नगर कमिटी के अध्यक्ष लक्ष्मण थापा फलफूल वितरण कार्यक्रम में सहभागी हुकन धन्यवाद डेलोबाट फलफूल वितरण कार्यक्रम में टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष लगायत नेकपा एमाले के नेता तथा कार्यकर्ता हुकन के सहभागिता रहल रह दार्चुला के मार्मा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुलक 5 जना घाइते हुलबाट मार्मा के भित्री सड़क अन्तर्गत टाकुमसे खोल्जो तर्फ जैटी कलक सु प्रप 01001-0076 नम्बर के जीप शनिबार रात के करीब 8 बजे पातिहल्ला कोना ठाउँमा अनियन्त्रित हुके दुर्घटना परल रह दुर्घटनामा मार्मा गाउँपालिका 1 कोल्जर निवासी 26 वर्षीय चालक हरीश महरा 27 वर्षीय मनीषा ठगुन्ना 17 वर्षीय स्मृति ठगुन्ना 13 वर्षीय सारिका ठगुन्ना तथा 16 वर्षीय विवेक महरा घाइते हुलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाकै सूचना अधिकारी के अनुसार घाइते मध्ये चालक महरा व स्मृति ठगुन्ना के अवस्था गम्भीर अलग बा सक्कु घाइते के धनगढ़ीमा उपचार हुटिरहल प्रहरी जनबाट खोज खबर में एक विश्राम पास फिर से विष्णुतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

0: यस यी उत्तीर्ण पश्चात गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरी भविष्य उज्जवल बनाउने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको चाहना परिपूर्तिको सम्वाहकको रूपमा विगत 2.5 दशकदेखि अनवरत सेवामा रहेको नास्ट मावि धनगढ़ी सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सहित स्वागत गर्दछ। दक्षता प्राप्त कुशल शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा पठन पाठन गराइरहेको सुदूरपश्चिम कैलाली धनगढ़ीको उत्तर बेहणीमा रहेको नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी नास्ट मावि साइन्स र म्यानेजमेन्ट अध्ययन अध्यापनको लागि उत्कृष्ट पाठशालाका रूपमा रहेको उदाहरण विगतमा उज्जवल भविष्य बनाइसकेका हजारौं हजार विद्यार्थीहरू आफै हुनुहुन्छ। अब हामी हजुरहरूको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारीको पर्खाईमा छौं। हाम्रा आकर्षणहरू विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण पश्चात विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा उच्चतम सफलता प्राप्त गर्दै आइरहेको सैद्धान्तिक सँगै प्रयोगत्मक शिक्षामा विशेष जोड़ आधुनिक शिक्षण विधि तथा प्रविधि मैत्री वातावरणमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको देशभरिका उत्कृष्ट विद्यालयहरूमध्ये पटक पटक पुरस्कृत भएको
1: प्रवेश परीक्षा 2083 जेठ 14 गते बिहान 10 बजेदेखि अन्तर्वार्ता जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजे नतिजा प्रकाशन 2083 जेठ 16 गते र अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2083 जेठ 27 गते दिउँसो 1:15 बजे।
2: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन
3: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-72-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
6: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुवेर थाहा निविना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना डाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठरोग हुइसेक्ठा
7: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहिफे लागसेक्ठा कुष्ठरोगको शंका लग्दैकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
6: महिला उक्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उक्र मद्दत गरी
7: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश
8: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ आइतबार सुनकी भाव प्रति तोला 2,94,000 रूपियाँ कायम गर्नबाट बिहिबार से आइतबारसम्म सुनकी भाव प्रति तोला 8,500 रूपियाँले घटलबा चाँदीकी मूल्य फेरि घटके आइतबार प्रति तोला 5,060 रूपियाँ पुगलबा सुनकी भाव ओह्रालो लागलबा दुई कारोबार दिनमा सुन प्रति तोला 8,500 रूपियाँमा घटलबा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ आइतबारकै लाख सुनकी भाव प्रति तोला 2,94,000 रूपियाँ कायम हुलबा आज कारोबार दिन केतु तुलनामा 4,500 रूपियाँले सुनकी भाव घटलबा आज दिन 2,98,500 रूपियाँमा सुनकी कारोबार हुन्छ। अस्तक बिहिबार 3,02,500 रूपियाँमा सुनकी कारोबार हुन्छ। बिहिबार निहर सुनकी भाव तोलामा 8,500 रूपियाँले घटल रह चाँदीकी मूल्य फेर घटलबा आज दिन प्रति तोला 5,390 रूपियाँमा सुनकी कारोबार हुलक आज 5,060 रूपियाँमा झरलबा बिहिबार 5,745 रूपियाँमा चाँदीकी कारोबार हुल रह। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वर्तमान के चुनौतीप्रति गम्भीर भिना एमाले नेतृत्व आग्रह कल्लबाटी आइतबार काठमाडौँ के बल्खु स्थित मदन नगरमा आयोजित 33 मदन आश्रित स्मृति सभामा बोली उहाँ उक्त बारबुटीलोबाटी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले के आत्मा सुधार एकता ओ जनता संघ सम्बन्ध सुदृढ भेटी राष्ट्र ओ जनता के हित सर्वोपरि धर्के आग बढ़ नाफे आवश्यक लगबुटीलोबाटी उहाँ के एमाले म यदा कदा सिद्धान्त ओ व्यवहार के बीच देख्न असन्तुलित के कारण समाजमा प्रश्न उठलक कति उल्लेख कति उहाँ अन्त्यकला जनमुखी कार्यशैली आत्म अनुशासन हो सेवाभावमा व्यवहारमा उतर्ती आग बढ़न आवश्यक लक्ष्य बोटिलोबाटी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले के लोकतान्त्रिक आन्दोलन संविधान निर्माण और विकास के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कलक स्मरण करती अब जनता के सेवाभाव में बढ़ी केन्द्रित हुई पन्ना बोटिलोबाटी जनमुखी कार्यशैली आत्म अनुशासन हो सेवाभाव के संग आग बढ़लक राजनीतिक दल के शक्ति बोलियो होना वहां के कहा हुई रह। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विष्णुतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
9: घर त जेनटेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
9: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
10: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
9: अब त म ढुक्क।
11: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
10: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली।
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
13: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
12: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
13: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
12: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
13: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
12: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
13: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
12: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
13: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
12: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
12: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 6377 72।
14: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
15: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
8: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा अब विदेश की खबर। कंगो के पूर्वी इटुरी प्रान्तमा इबोला भाइरसकी संक्रमणमा से हाल असिजनाकी मृत्यु हुन सफे 246 थो संकटवश केस फेफेला पलबाट विश्व स्वास्थ्य संगठन यिन विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा कलबाट यद्यपि डब्ल्यूएचओले यही अवस्थामा अभिन महामारी के श्रेणीमा फेर नै पर्ना जानलबाट कंगो के स्वास्थ्य मन्त्री स्यामुएल रोजर कम्बाके अनुसार यही चो पहिलो चो संक्रमण एक नर्समा देखा परल अनुमान गरिदा बा उहाँ गत अप्रेल 24 मृत्यु हुई रह परीक्षण के क्रम हालसम्म इबोला के बुन्डी बुग्यो स्टेन के आठो केस पुष्टि हुलबाट हेरो के हाल इटुरी प्रान्त के बुनिया वारम पारावो मंगबुलु क्षेत्रमा फैलिसकेबाट कंगोमा इबोला सन् 1976 पहिलो चो देखल रहे यी देशमा देखा परल 17 प्रकोप हो विशेषज्ञ भूकनके अनुसार यही इबोला के बुन्डी बुग्यो स्टोन फेला पलबाट जबकि हिंस्याघ कंगोमा थेरोसिन केस जायर स्टोन के हुइलक हाल उपलब्ध थेरोसिन इबोला के खोप उपचार जाहिर स्टोन ध्यानमा धना बनेलक यही नयाँ स्टोन के अधिकारी खुन के चिन्ता बढ़लबा इटुरी प्रान्त के राजधानी बुनिया के बासिन्दा उहाँ के त्रास के माहौल रलगुटीबाट स्थानीय निवासी जिनमार्क असिम्बी के अनुसार पाछा के हप्ता से लगातार मृत्यु हुई रहो कबू काल एक दिन 203 उनसे धेर बढ़ी मनिन के अंतिम संस्कार कडपना बा मनिन के सुरमा यूरोप का हो के बुझ्न नै सकलक रहे तर यद्यपि बुनिया बजार और सार्वजनिक स्थलमा फेर सामान्य गतिविधि जारी नै बा यह समाचार संघ खोज खबर वाले जनाए से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो एमएलए द्वारा टीकापुर अस्पताल के बिरमे होकर फल फूल वितरण दार्चुलामा जीव दुर्घटना 5 जना घाइते एमाले वर्तमान चुनौती प्रति गंभीर बिना आवश्यक बाकी के पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी ओ कंगोमा इबोला भाइरस समस्या सृजना की मिट्टी डब्ल्यूएचओ ले घोषणा करल विश्व स्वास्थ्य संकटकाल लिटा बक्ला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी बक्ला खोज खबर से मिस्ता चौधरी विदा हिटु यहां पास 6 बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
16: हेरी न काका खाई फुला टूरे बारी में गेल रही सपो काट देली बीस निकाल देवी की कई के लेके आयल बाटू
17: सपो कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम से उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सपो कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्वदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
16: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूँ
17: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्ष चिंता नहीं पड़त
16: खाई ना तब ना तुम कुछ फेर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस ना फोन कर सकली बात
17: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी
18: वे बाबू संदेश मैं रोक छत से बाहर आता
19: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नभएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुइना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गरैला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठरलर पठा सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेभिठा
20: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
9: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
10: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
9: अब त म ढुक्क
0: मिलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
10: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
21: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
10: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
21: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
10: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
22: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
21: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
23: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
0: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
10: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848518828
24: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवा जागिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका अन्से के कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 98486 39 261

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: विद्युत महसूल भुगतानी संबंधी सूचना 2083 असार 1 गते बाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।

शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुरकै लाली।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: वडा नम्बर 1 जेठ 8 गते समय बिहान 10 बजे देखि
1: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजे देखि
0: छुंगा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजे देखि
1: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का न घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर।

एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोली क्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कहाँ से लंग बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का का पिये रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रटगैया झोला उद्योग में रटगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोर्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठीघरको शल्यक्रिया सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा,
0: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा,
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
0: रोग सेवा,
1: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा,
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा,
2: हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार,
0: र सिटी स्क्यान सेवा,
1: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयू सेवा,
0: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पारासिटोलोजी, सेरोलोजी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पतालका अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा चौबिसै घण्टा,
0: इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाइ,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: मुर्गी दाना देना जाला
4: एक सौ तपा बाका मुर्गी न फार छे लत्ती से बिगड़े से बक्सा की आनो हारी छट्टा
3: तापन घिसका चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस आकर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगे भी
4: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खुद लखो का
3: आरम कीड़ा फटिंगा मुंह सांप सिर नीचे आकर कहीं का फलाम को जारी लगा रही बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेकी बेन अपना न दाठी दूर रही ना
4: हो हुई ना था का करना हो तपा देखती की डर नागा लगना रही था देव सपोत आपन घूमता बारी वोट कर लीता
3: हमरे चल सापन से डरे ना नहीं बोली मुकर थे हमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व आपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
5: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई व नी जिसके साप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रह लसी साप नी दस्त पर मुकर खेना खाजा बाहर निस्कर्ण नाम घास काटा बेल छाला बेल ड्यांगा बेल छू बेल से मनै मही मारकलाकबाट कना सबस्क प्रतिरक्षा कना क्रम साप दस लाख रह मनै सापन व्यक्ति की मारकलाक रह उसी का करबे फिर साप दस लाख रह
6: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेती था
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
9: सीटीभीटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना, सामान्य चिकित्सा HA 40 जना, नेत्र विज्ञान OA 40 जना, डिप्लोमा इन फार्मेसी DPH 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
8: भर्ना कार्यक्रम
9: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू वैशाख 29 गते देखि।
8: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार।
9: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र। अनलाइन आवेदन फारम www.ctvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SA कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
8: आवश्यक कागज पत्रहरू
9: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति,
8: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि,
9: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि,
8: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो,
9: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा त्यो स्थानीय तहको सिफारिस।
8: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
9: सम्पर्क नम्बर 0969900044, 9858780044, 9847202740, 97642 33921 र 9659663520।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम को रात्रि 9:55 बजे खबर संक्षेप में यहां स्वागत छ। खबर संक्षेपबाट रतन चौधरी को नमस्कार। कैलाली को टिकापुर नगरपालिका 8 स्थित धनसिंहपुर स्वास्थ्य चौकीले समुदाय में स्वास्थ्य सचेतना जगाउनका टोल टोल में स्वास्थ्य सरोकार समिति गठन गरेको छ। वाड़ा में रहकर 17 वटा टोल विकास संस्था में 17 वटा स्वास्थ्य